0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
5: बीर डेंटल, बीर डेंटल, बीर डेंटल।
6: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
7: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचार दाँत सफा करने दाँत भर्ने दाँत निकालने दुखे दाँत को जरा को उपचार खाली ठाव में दुरुस्त प्राकृतिक जस्ते नकली दाँत राख्ने बांगो टिंगो तथा नमिले दाँत फिक्स अर्थोडोन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाने गिजा को रोग जस्ते गिजा सुन्निने रगत पिप बग्ने मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार पहेलो खैरो दाँत सानो र ठुलो दाँत छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने
6: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ
7: फोन नम्बर 081 532 375

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
0: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
1: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
0: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफर देखि आकर्षक उपहार सम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
1: ए साँच्चै? अनि अझ विशेष के छ?

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Toilet Bunny, Extreme Energy Drink.
1: ओहो आज दाई हूँ नहीं मजा लगा तो मजा से दवाई करेना कहतू
2: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
1: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत त
2: वहां ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए
1: ए ओसिनो कला से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रहा
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
1: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिना हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाई ना वहाँ अनुभवी चिकित्सा को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई वत्रकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना जीर्ण रोग काने धूसी कान खजुईना कान कम सुनना कान दम्मा हुईना बिरामी के उपचार ओ परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार फे हुई वकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगैना ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाए अनुसार उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी सेवा वहां मिला
1: ए ओसिड हो कल से बुडू हो वहां ले जाके उपचार करैला से वजह से सुन से कही त
2: एकदम समय में उपचार करैले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 ओ 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है।
0: बस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो एक साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: अरे रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले लिए बैठे हैं ना। और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो श्रोता आप लोग एकदम तैयार हो जाओ, जाए कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के दुकान मकान खेत खरियान दाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम परसोता संचालक मियाँ जी पराधिक माँ जो सदा साथी रहा आज भी चंदा जी दोनों जिने आए गवा गया है। तो साथी आप लोगन का सदा बहार अवधि हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन और सब मेर के गीत आप लोगन का सुनावा जी कहे से। हाँ कल इतवार से नवरात भी चालू होगा है साथी, तो आप लोगन का नवरात के भी गाना आप लोगन का प्यारा प्यारा भक्ति गाना सुनावा जाए। मगर आप लोग एकदम तैयारी में रहा जाए, जो क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन के भी उत्तर दिया जाए। तो ये कार्यक्रम सुनाया था आप के प्रिय रेडियो किशनसार FM नेपालगंज बारा बिलासपुर जो ये बाकी जिला से प्रसार होते हैं, तो ये विश्व में जो ऑडियो वीडियो सब सुना जाए देखा भी जाए। तो एकदम तैयारी में रहा जाए, नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आओ जी। आपका मैसेज पठोए का है तो 98-155-96-366 जो भी भक्ति भजन नात कवाली जो भी छोटकरी माँ लिख के अपन पता ठिकाना नाम भेजा जाए, आपके मैसेज भी हम समावेश करबे। तो साथी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है, जहां सब मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेर के कपड़ा असियत हैं, वहां से आपका टी शर्ट दिया जाए। तो साथी पहला नंबर में गाना है कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाकन दे, कौन फिल्म हो कौन गायक लोग ही गाना का गायन है, यानी सिंगर के नाम बतावा जी कौन कौन कलाकार लोग ही गाना का गायन है। ऐसे दो नंबर में गाना है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है हद से गुजर जाना है, कौन फिल्म हो कौन गायक लोग ही गाना का गायन है। तो साथी आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए, जो एकदम तैयारी में एकदम लगा जाए, कैसे काते मेहनत के फल आपका ज़रूर मिली। तो साथी आप लोग एकदम जुड़ा जाए। तो इसे मैसेज भी आ चुका है, मैसेज भेजे वाले हैं होम राज वर्मा जो गुरुआ गांव वाके से, ये लिखने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार, नवरात जो ये चलत है दशहरा के तरफ से आपका आपके पूरे रेडियो परिवार का बहुत ढेर से घर शुभकामना मुबारकबाद है। तो आपका भी होम राज वर्मा जी कहने हमका भक्ति गीत सुना दिया जी, माई डोली चढ़ के चले ली सेवक के घरवा, ठीक है हम आपका भक्ति गाना जरूर सुनेबे। ऐसे कहने हमका होम राज वर्मा कहके चिन्हे जाने वाले सब लोगन का सुनाओ चाहित है। ऐसे दोसर मैसेज भेजिन है, मैसेज भेजे वाले हैं नान बाबू पहुना पान भंडार जो खजुरा बाजार से, इन्हों कहने कि मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है, इन्हों कहने कोई प्यारा से भक्ति गाना सुना दिया जी, हमका नान बाबू पहुना कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहित है, अपने घर परिवार का यार दोस्त का सब लोगन का। ऐसे मस्त राम पाठक जो ही खजुरा रोड धम्बोजी जो ही पान की दुकान से, इन्हों मैसेज भेजिन है, इन्हों कहने मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है, कहने कि मियाँ जी हमों का कोई प्यारा से भक्ति गाना सुनाए दिया जी। इससे दूसर मैसेज है गोमती प्रसाद वर्मा जो जानकी गांव पालिका 3 बंजारे गाँव से मैसेज भेजिन है, इन्हों कहने नमस्कार मियाँ जी, तो नमस्कार है, कार्यक्रम के प्रशंसा ज़्यादा लिखी नहीं है, कहीं ने कोई प्यारा से भक्ति गाना सुनाया दिया जी। इसे पुजारी टेंट हाउस जो जानकी गांव पालिका 3 बंजारे गांव से पुजारी वर्मा मैसेज भेजी ने, इन्हों कहने हमका सुनाया दिया जी, माँ शेरा वाली तेरा शेर आ गया, तेरे बेटे अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया, ठीक है हम आपका आखिरी में ही भक्ति गाना शुरुआत में आखिरी में ज़रूर रखबे, कोई भी गाना हम भक्ति राग देवे, कहने कोई भी गाना भक्ति सुना दिया जी। तो साथी आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जा, सुने कैसी 415-122 के लाइन में आवा जी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर जहां सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब कपड़ा सेहत है वहाँ से। ऐसे आप लोग जो गाना के
आप लोग जो सिंगर हैं उनके नाम बताओ जी। पहला नंबर में गाना है कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे कौन फिल्म हो कौन सिंगर गाना का गायन है। ऐसे दो नंबर में है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है हद से गुजर जाना है। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए तो ले हम चलित है प्यारा से छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद माँ सुना जी प्यारा से भक्ति गीत होमलाल वर्मा होमराज वर्मा के जो फरमाइश है माई डोली चढ़ के चले ली सेवक के घरवा। तो साथी आप लोग नंबर से एकदम फोन करके अपन संपर्क में आवा जाए और क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए, बात भी किया जाए, अपने मनपसंद के गाना भी सुना जाए। तो अब हम चलित है पहले ब्रेक के तरफ।

0: हाँ तो सरताई जो प्यारा से भक्ति गाना सुनागा आप लोगन का खैर अच्छा लाग हुई जो हमरे नवरात भी चालू है यानी जो हमरे अवधि भाषा में कहते हैं दशहरा तो इसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415-122 के लाइन मान आवा जी नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आओ जी। आज के जो गायककार फिल्म के नाम बताओ जी सही उत्तर दिया वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो पहला नंबर में गाना है कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाकन दे कौन फिल्म है कौन गायक लोग गाना का गायन है। ऐसे दूसरे नंबर में गाना है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है हंसी गुजर जाना है कौन फिल्म हो कौन गायक लोग ये गाना का गायन है। तो आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए ये कार्यक्रम के जो परिजक हैं जहां से आपका पुरस्कार दिया जाता है तो परिजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है वहां से आपका टी शर्ट दिया जी। तो आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए और मैसेज पठवा जाए मैसेज में यहाँ आप लोग लिखा जाए 98-55-96-3-6 माह मैसेज भेजा जाए। कोई साथी हमरे फोन लाइन में है देखी को कहाँ से हैं उनका स्वागत कर लिया जाए। नमस्कार
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: नमस्कार, नमस्कार। आपके नाम
1: जी ठीक है?
0: हाँ सब ठीक है। नाम बतावा जाए।
1: चेतराम कलवार गड़ेलियन पुरवा से।
0: चेतराम
1: हाँ
0: और चेतराम जी
1: ठीक है हमारो
0: चेतराम कलवार आए।
1: हाँ
0: तो ये गड़ेरियन पुरवा कहाँ पर है?
1: ये है कम्बी।
0: कम्बी
1: हाँ कम्बी के लगते हो।
0: अच्छा इधर राप्ती तरफ है नहीं?
1: हाँ हाँ।
0: अच्छा चेतराम जी कार्यक्रम कब से सुना जाते है?
1: सुनी तो हम सही का दिन से है जब से कार्यक्रम चालू हुआ है।
0: हाँ
1: तब से सुनी थे।
0: अच्छा तो आज के कार्यक्रम में यहाँ शुरू से सुना जाता है?
1: हाँ हाँ शुरू से सुनी।
0: तो कहाँ करा जाते खेती बाड़ी में जुटे हो?
1: हाँ
0: धान वान तो तुरे बाहर पानी में न बूढ़ा हुई
1: ना तो खाले वाले खेते में है ऊंचे वाले मान तो नहीं
0: है ऊंचे नहीं है नहीं। तो चेतराम जी जैसे गायककार फिल्म के नाम बतावा जाए।
1: फिल्म के नाम तो न बता पे हम काहे से फिल्म ज्यादा देखी नहीं है।
0: हाँ
1: छोटी मोबाइल भी है।
0: अच्छा तो आप अपसिक बजे वाला कोई अपने मन पसंद के गाना चॉइस किया चाहा जाते है?
1: हाँ
0: कौन गाना?
1: एक तो भजन सुना दो।
0: कौन भजन?
1: अरे बेटा न मानता मात पिता को भैया ना मानता बहन को बंसी वाले तेरी दुनिया में क्या हो रहा है पापू हंसता धर्म रो रहा।
0: गाना के बोल का है शुरू में जो शुरू है उका बताओ।
1: तो यही गाना है
0: भैया ना का
1: बेटा ना मानता मात पिता को
0: बेटा ना माने मात पिता को आए।
1: हाँ भैया ना मानता बहन को बंसी वाले तेरी दुनिया में क्या हो रहा है पाप हंसता धर्म रो रहा।
0: ठीक है बेटा ना माने मात पिता को हम कहीं कहेरी भी ना कोशिश करी भजन हो बेटा।
1: हाँ हाँ भजन है।
0: हाँ बेटा ना माने मात पिता को आए।
1: हाँ भैया ना माने बहन को
0: भाई ना माने बहन को आए।
1: हाँ बंसी वाले तेरी दुनिया में क्या हो रहा है पाप हंसता धर्म रो रहा।
0: बंसी वाले दुनिया में क्या हो रहा है?
1: हाँ पाप हंसता धर्म रो रहा।
0: पाप हंसत है धर्म रोवत है नहीं?
1: हाँ
0: ठीक है कोशिश करबे अगर मिलगा ना।
1: हाँ
0: तो हम सुनाए देबे तो अपसिक बजे वाला जो भी गाना है वो सुनाई हो की का की का?
1: सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम में जो है आप लोगों का सुनावा जाए उसके बाद मैं जब FM परिवार सुनाते हैं सबका
0: सबका है ने।
1: हाँ
0: ठीक है चेतराम जी ना नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार।
0: हाँ साथी कमदी से रहा है गढ़रियनपुरवा से चेतराम कलवार। तो साथी ऐसे सुना 81415 122 के लाइन में 81415 122 के लाइन में आवाज

0: रंगाउ देस मेरो एवरेस्ट
1: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
3: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
4: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
5: ओहो, घर त बनायो तर आफ्नो मान्छे कोही आयो भने घर पत्ता लगाउनै गाह्रो।
4: किन गाह्रो? मार्बल पत्थरमा नाम लेखाएर राखे पनि भइहाल्यो नि।
5: भन्न त सजिलो छ तर कहाँ खोज्न जाने होला?
4: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्ज फुलटेक्रा राप्ती रोडमा रहेको न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टरमा मार्बल पत्थरमा नाम लेखाउनुका साथै तामा पित्तलमा कम्प्युटरद्वारा नाम लेखाई गरिन्छ। समिल र सामुदायिक वनको टाचा बनाउनुका साथै विभिन्न किसिमका मार्बल सिमेन्टको मूर्ति पनि पाइन्छ नि।
6: प्रोप्राइटर राकेश कुमार विश्वकर्मा, व्यवस्थापक त्रिभुवन प्रसाद विश्वकर्मा, न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टर, नेपालगञ्ज 5 बाँके।
3: सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 081-536-410 र 98-480-26-435।
7: माया बाबु, टेलर के त सक्कु सामान हो गेल बा, अब मसिन कहाँ से नन्ना हो?
8: छी दादु, फे ठहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
7: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे हैं बाबू?
8: उहा त अनमोल, उषा ओ ताज ब्रांड का संग मेरमेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री ओ मरमट कई जिठा। एक रक संग संग मशीन संबंधी सक्कु पार्ट पुर्जा ओ सामान फे पाजिठा। अट्रगेल कहाँ हो? कुशल कारीगर हुकन से मरमट फे करा जिठा।
9: एक एक संगे दस्या देवारी हो, छठ त्योहार सम 5-30% सम ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
7: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर, घरबाई टोल 2, पीपल चौतरा, नेपालगंज बाँके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 98-481-28-318 और नंबर बा 98-224-52-478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।

0: हाँ तो श्रोताई व्यापारी विज्ञापन के बाद वहाँ फिर से स्वागत है। कोई साथी है देखी को कहाँ से नमस्कार।
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: आपके नाम?
1: आपके नाम दिल्ली राम थारू
0: है।
1: दिल्ली राम थारू।
0: दिल्ली राम।
1: हाँ
0: और दिल्ली जी
1: सब ठीक है सर।
0: दिल्ली राम थारू है ना।
1: हाँ।
0: दिल्ली पनी छा राम पनी छा थारू पनी छा तीन नाम छा।
1: हाँ तीन नाम हमारे
0: है ना।
1: हाँ जी रे।
0: बड़ा प्यारो नाम छा।
1: क्या करे पहले से नाम रख दे जाते तो क्या करे प्यारे नाम हो जाए।
0: हाँ घर कहाँ बा?
1: माछागढ़।
0: माछागढ़ लक्ष्मणा।
1: हाँ लक्ष्मणा से आगे।
0: हाँ लक्ष्मणा से आगे माछागढ़ बा।
1: हाँ
0: ककोरा डगरी तो बा ना।
1: हाँ ककोरा डगरी में बा।
0: हाँ तो और माछागढ़ के हाल चाल कैसन के बा?
1: ठीक है बा। चला था नवमी चला था आदमी।
0: धान वान काट सकलो?
1: नहीं काट लिया अब दसवीं बात काट।
0: पानी वानी तो ना हुई खेतवा में?
1: नहीं हो पानी नहीं ऊँच ठावा तनी खाल खाल ठावा बा ऊँच में नहीं हो।
0: कोई कोई कोई कोई और तो बहुत पानी गिरल।
1: हाँ गिरल तो बा।
0: हमारे नेपालगंज रंग तो पूरा खेतवा भरल बा पानी। हाँ हाँ हाँ बहुत बा बाढ़ है जिसमें। तो दिल्ली राम जी
1: हाजिर हाजिर।
0: कार्यक्रम कब तक सुन ठो?
1: सुनती हमरे जहाँ तक आवे फुर्सत रह तब सुनती है। फुर्सत नहीं तो नहीं सुन मिले।
0: कार्यक्रम माया न मारो ना कार्यक्रम सुन।
1: कहाँ माया मरवो कहाँ माया मरवो हमरे फुर्सत तो सुनती है फुर्सत नहीं रहते नहीं सुन मिले तुझे माया कहाँ मारते थे।
0: मैं फिर तो पड़ोसिन बनैया हूँ।
1: हाँ हाँ
0: मटेरिया के
1: मटेरिया
0: ककोरा मटेरिया हो अरे तू न जानबो मोर बाबा बहुत पुरान मनैया बाटे।
1: शायद मैं जान लेम कि
0: ना जान पैबो।
1: जान हमार मामा ओ माटे जे साइड में सी उठी।
0: हां के बहरियान के उधर की कहर
1: वो नहर के किनारे वाला।
0: ए तो दिल्ली राम जी जो मैं क्वेश्चन रख ले बाटू उत्तर दे तो आज के पुरस्कार तू ही ले जाओ। पहला नंबर में गाना बा कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन फिल्म हो कौन गायक लोग गाना का गाई नहीं। से दूसरे नंबर में बा धीरे धीरे प्यार का बढ़ाना है से गुजर जाना कौन फिल्म कौन सिंगर लोग गाना गाई नहीं।
1: पहले पहले जो पहले को प्रश्न जाओ नदी पार हो फिल्म के।
0: हाँ
1: ओ गैला है कुमार सानू
0: और गाना बताई लो कौन दिशा में।
1: हाँ
0: और गायककार को हो
1: उदित कुमार सानू उदित नारायण झा।
0: कुमार सानू।
1: हाँ
0: और
1: उदित नारायण झा।
0: तो और बताओ
1: अब ये तो मैं नहीं जान पाया अब हो कि ना अब ये दिन भी गिला हो ये सब काम करे।
0: वो तो लास्ट में सुनबो तो पता लाग जाए ना कि गलत बा कि सही बा। हाँ तो ली अब सिख बजे वाला गाना बा के का सुनेबो।
1: हाँ सुन के जैसे सुन के फेम के जम्मा जतना जाने आदो तकना जानन जम्मा सुनबो जतना हमन के रेडियो जो सुनत है तेन जम सब जान के सुनाई।
0: तो ली राम राम।
1: हाँ जी राम राम दिल्ली।
0: हाँ साथी दिल्ली राम थारू रहा है जो माछागढ़ लक्ष्मणा माछागढ़ से। तो साथी से सुना कैसी 415 से 22 के लाइन में कोई साथी आ चुके देखी को कहाँ से नमस्कार।
2: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
2: भादरा सिंह शेरपाली सी गाँव से बोले थे।
0: भादरा सिंह शेरपाली सी गाँव से बोलती हाँ
2: बोलती नहीं बोलते हैं बातावा है।
0: हम जानी बोलती है।
2: हाँ बढ़िया जी।
0: हाँ भद्रा जी और ठीक है?
2: बस बढ़िया है आपके आशीर्वाद से।
0: तो ले कोई तो सिंगर फिल्म के नाम बता।
2: तो फिल्म तो दोनों देखा आज से 30-35 साल पहले लेकिन कौन गावा है कौन वो है हीरो के नाम अकेला बताई पाए हीरो हीरोइन
0: ना बता पाई हो
2: ना बता पाए बेटा है झूठ हुआ मुठ हुआ बोल पे।
0: अच्छा तो लियो ठीक है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: हाँ साथी भद्रा सिंह से सिरपाली रहा है उनका, उनका कहाँ से बोलती है तो कहाँ थे बोलते है ना वही बोलता हूँ। हाँ तो साथी हमरे भद्रा जी आवत है तो एकदम हंसी खुशी के साथ में आवत है, एकदम हमरे श्रोता का लोगन का अभी हंसाए के जात हैं। धन्यवाद है आपका भद्रा जी। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लाइन में कोई साथी हमरे फोन लाइन में आए रहा है मैंने चले गए, तो इससे आवे जाए कर्म जारी रही। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ते रह जी, तो इसे मैसेज है हमरे हाथ में। हाँ मैसेज है हमरे हाथ में। हाँ 2 बजे के टाइम चेक के समय भी आएगा है, तो साथी अब हम चले थे पहले 2 बजे के टाइम चेक के बाद में आपके फ़ोन मैसेज और सब हम आप लोगों के जरूर समावेश करवाए। तो अब सुनते रहा जी रेडियो किसी सारे फिल्म के साथ ही रहा जी।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
2: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
1: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
2: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफरदेखि आकर्षक उपहार सम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
1: ए साँच्चै, अनि अझ विशेष के छ?
3: दसैँ तिहार झिलिली अफर,
1: सोफा तथा फर्निचरमा 30% सम्म छुटको व्यवस्था। 35,000 सोफा किन्नुहोस्, 35,000 फ्रिज स्क्रेच कार्ड मार्फत जित्नुहोस्।
2: साथै इलेक्ट्रिक जग, राइस कुकर, हिटर लगायत आकर्षक उपहार। 10 भाग्यशाली ग्राहकलाई निशुल्क थाइल्यान्ड भ्रमण।
1: अनि टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युब फलो गर्नेहरू मध्ये 1 35,000 रुपियाँको सोफा निशुल्क।
2: नेपाल भर डेलिभरी, 15 सम्मको ग्यारेन्टी।
1: थप जानकारीको लागि सोफा हब नेपालगञ्ज, फोन नम्बर 97-0511-4870।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
5: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
5: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 98-44-88-35-75 और 98-08-25-40-37।
4: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
6: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नाक, कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
6: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेक जानकारी भी करावा जाता है।
4: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
6: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: हाँ तो सुरताई प्यारा से गाना छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में आप लोगन का फिर से स्वागत है। कोई साथी हमारे फोन लाइन में है, देखी को कहाँ से नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ नमस्कार।
1: हेलो।
0: अरे नमस्कार साहेब।
1: नमस्कार, हमने तो फोन ही नहीं उठा था, कहा तुम
0: आए
1: एक घंटा से लगाए थे, फोन ही नहीं उठा था।
0: आपके नाम बताओ।
1: अरे राम खिलावन थारू जमने सतपतिया।
0: अब तू वहाँ चाहलम फिले हो, तुझसे हाथ दुआ सलाम करी तो हमरे।
1: अरे दुआ सलाम का है, एक घंटा से लगाए थे फोन ही नहीं, फोन जात है आवत है तो उठाते कि हमने ब्लैक लिस्ट में यहाँ रख दिया का।
0: नहीं और बतावा जाए।
1: सब बढ़िया है, घाम निकला है, धान काटा जाए कि न काटा जाए, मौसम के बारे में बताओ।
0: हाँ अभी पानी है, मंगर से सूख तक पानी पानी है।
1: मंगर से सूख तक
0: आप सुना जाते, दुनिया है कहूँ गिर जाई।
1: नहीं तो मैंने तुम लोग अब प्राविधिक में यहाँ आओ, दुनिया में आओ, सब संकलन करा था तो आज कहूँ।
0: अब आज काल के तो हाथे हाथे में मोबाइल समय एकदम।
1: अरे मोबाइल है लेकिन हमारा वो वाला मोबाइल नहीं है, जो खाली बटन वाला है, बटने वाला खिलाई से।
0: भौजी थी?
1: भौजी नहीं, तुम्हारे वो बहुरिया तीर है, वो बहुत तीर बटने वाला है।
0: ए, नानके वही 2025 से वाला।
1: और क्या
0: मैंने
1: वही काम करा था तो क्या करी,
0: मजा वही में रहा था।
1: हाँ
0: कहते कि सोना से कम नहीं हराया जाए तो गम नहीं।
1: गम नहीं
0: तो बात तो करना वत्ते है।
1: करना होता है
0: बहुमा यहाँ फेसबुक
1: टिकटॉक, टिकटॉक और फेसबुक खाली देखा था, अरे गहरे बात सुना था।
0: अच्छा तो ले सिंगर के नाम बताओ।
1: अरे तो बताओ, लगते ना रहे तो फिर सुनबे ना कि हम।
0: पहला गाना है कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन फिल्म है, कौन सिंगर लोग गए नहीं इसे। दो नंबर में गाना है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है,
1: दूसरा नंबर के तो फूल और कांटे हुए।
0: हाँ
1: और पहले नंबर के तो अरे काग, अरे फिल्म के नाम है भूल गए, नदिया के पार।
0: तो सिंगर के नाम बताओ।
1: अब दूसरे नंबर के हुए कुमार शानू, अरे लता मंगेशकर, और पहले नंबर के लता मंगेशकर।
0: ठीक है नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी रहे हमरे राम खिलावन जमनी सतपुतिया बर्दिया से रहा है साथी, तो इसे सुना है 81415122 के लाइन में आ जाए। कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चला था आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 MHz से। तो साथी ऐसे कार्यक्रम के परेजक है जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है, जहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो इसे दो ठोर मैसेज हैं इतनी हम पढ़ दी, जैसे कृष्णा परियार जो ही संगम टेलर से मैसेज भेजी नहीं लिखी नहीं। सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है नो कहने कोई प्यारा से भक्ति गाना सुना दिया जाए। कैसे नवरात चालू है और कहने गाना सुनने वाले साथी हैं जैसे सुभाष परियार हैं, मोहम्मद अफरोज है, पूरे स्टाफ का सुनाव चाहिए है। ऐसे बद्री चाय वाले जोन है जो सरदार लांड्री के ठीक सामने से इन्हों मैसेज भेजी ने कहने कि मियाँ जी कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। तो ठीक है हम आपका गाना जरूर सुनेबे। तो साथी अब हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन तरफ।
2: हाय के गर्ने होला, अब सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
3: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
2: के भने नि डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
3: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
2: कस्तो खबर?
3: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोग का विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही MD इंटरनल मेडिसिन TU एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली यहाँ नई सेवा दिनुहुन्छ।
2: ए साँच्चै
3: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
2: ए, त्यो त झन् राम्रो
3: हो नि। डाक्टर पूनम आचार्य एमबिबिएस, एमडी केयू, आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई एमबिबिएस, एमएस केयू, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
2: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
3: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
2: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
3: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
2: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081-531-860 र 081-531-861।
3: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।

0: Toilet Pony, yeah. Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9580303479 र 9840821380।
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
3: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
4: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री IVF क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री IVF क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
4: धन्यवाद शुभश्री IVF, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री IVF क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ, फोन नम्बर 9861414900।
6: बाबा के कान पीड़ा है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है।
6: बस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 9840206697, 9584206697, 9584203।

0: यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
1: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
0: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
1: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
0: सम्पर्क नम्बर 081535717।
2: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावत रहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
3: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
2: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081536465, 98249806665 और 98482806465।

0: हाँ, तो सरताई व्यापारी विज्ञापन के बाद में प्यारा से गाना के बाद में आप लोगन का फिर से स्वागत है। तो नंबर में जोड़ा जाए सुना 81415 122 के लाइन में आ जाए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 81415 122 के लाइन में आओ जी। कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के प्रिय रेडियो कृष्ण सार FM 94 MHz से जो नेपालगंज बारा बिलासपुर से ही प्रसार होते, तो साथी कृष्ण सार FM से। तो पहला नंबर में गाना है कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन फिल्म है कौन सिंगर लोग ये गाना का गायन है। इसे दो नंबर में गाना है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है ऐसे गुजर जाना है, कौन फिल्म है कौन सिंगर लोग ये गाना का गायन है। तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का तो पुरस्कार जरूर दिया जी। तो इसे आप लोगों के पठवा मैसेज हमारे हाथ में बहुत ढेर से घर है जैसे मैसेज भेजे वाले हैं लिखने। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है ये दल सिंगार यादव जो जानकी गांव पालिका 4 खजुरा से जो मैसेज भेजी ने कहने कि मियाँ जी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके कार्यक्रम की तारीफ जितने किया जाए उतने कम है और बहुत अच्छा लागत है कार्यक्रम, कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। हमका दल सिंगार कहके यादव चीने जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहे थे अपने घर परिवार का सबका। मियाँ जी आपके परिवार रेडियो के कृष्ण सार FM के जितने होल परिवार हैं सब लोगन का आपके रेडियो जहाँ तक सुनाई जाते, तो दल सिंगार जी ये रेडियो तो आपके विश्व में है, जहाँ भी जाओ जी आप ऑडियो वीडियो दोनों सुना देखा जाए। कई सब आजकल के नेट के जमाना आएगा है, तो धन्यवाद है दल सिंगार जी ऐसे मैसेज पठौते रहा जी। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजे वाले हैं रजनवा से मैसेज भेजे नहीं है महमूद खान जी, इन्हों कहने मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम। इन्हों कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जाए, अपने लौंडा जो मुबारक खान सऊदी में उनका सुनाओ चाहते, अपने पोता कहीं हैं जो हसनैन खां हैं और तमाम साथी लोगों का घर पर का सबका सुनाओ चाहते, धन्यवाद है आपका। ऐसे दूसर मैसेज आवा है मैसेज भेजे वाले साथी बरसाती जो बरसाती मियाँ जो सिराहा से मैसेज भेजे हैं, धनसा सिराहा से कहने की मियाँ जी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपकी बोली बहुत अच्छा लागत है और हमका कोई भी प्यारा से गाना सुना दिया जाए और हमका बरसाती मियाँ कहके चिन्ह जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहिए, आपके कार्यक्रम हम बहुत प्यार प्रेम से सुनित है। हाँ तो श्रोता आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुना 81415 122 के लाइन में आ जाए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 81415 122 के लाइन में आ जाए। कार्यक्रम में यहाँ जो मैसेज पठवे का है तो 98155 96 306 में मैसेज भेजा जी। ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर जहां समेर के लेडीज जेंट्स अड्डा पीस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार समेर के कपड़ा सिए थे कुशल कारीगर द्वारा, वहां से आपका टी शर्ट दिया जी। तब हम चले थे पहले छोटा सा ब्रिक के तरफ।
1: सुविशु अपॉर्चुनिटी 1900 वार्षिक उत्सव को अवसर में प्रस्तुत सुविशु अपॉर्चुनिटी। इस योजना अंतर्गत ग्राहक 25 MBPS इंटरनेट र क्लियर टीवी को फुल HD पैकेज प्रति महीना मात्र रु 1040 र 65 भन्दा बढी HD चैनल भएको क्लियर टीवी को पैकेज प्रति महीना रु 221 मा, साथै दामी म्युजिक को प्रीमियम पैकेज 3 महीना का लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरु लागू हुने छन्। थप जानकारी का लागि www.subisu.net.np सुबिसु।

हाँ तो साथी अब का किया जाए, कार्यक्रम के एकदम अंतंत महान, तो हमरे कार्यक्रम के समय भी एकदम अंतंत महान। तो साथी हमरे स्टूडियो के घड़ी में 2:56 हो चुका है। तो साथी अब हम फोन भी ना ले पेबे, आपके मैसेज भी ना पढ़ पेबे। तो आज के कार्यक्रम आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ के सुनागा, आप लोगन का बहुत बहुत धन्यवाद दीत है। ये कार्यक्रम ऑडियो वीडियो पठवे वाले जो प्रकाश के जैसे हमरे प्रादिक माँ जंदा जी रहा है, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम के प्रायोजक जफरुद्दीन और पप्पू जी रहा है ज्योति टेलर के, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोग अपने अपने जगह पर कार्यक्रम बैठ के सुनागा, ऑडियो वीडियो सुना देखागा, आप लोगन का भी दिल से धन्यवाद देते हैं। प्यारा से गाना के साथ में हाँ परसोता संचालक मियाँ जी विदा ली थे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: back to back. Back to back.
1: In this song on
0: Stay Tuned.
2: भैया जी बताओ ना, आप हो कौन?
3: मैं वो था जिसकी तबाही की गवाही अखबार का पन्ना पन्ना देता था। फिर एक दिन वो मिली, जिंदगी पहली बार।

0: Lebonia. Extreme energy drink.
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037। नींद न आए हमको हाय
1: जग सोना है। बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में ढूसी।

0: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके। सम्पर्क नम्बर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: Back to back. Back to back.
3: In this song.
2: On. Stay tuned.

खुद ब खुद बन जावे डेड बॉडी, बड़े से बड़े बदमाश भी बोल देवे मने सॉरी। देख मेरा नाम चले, देख मेरा काम बढ़े, पीछे देखो तो कितने लोग मुझसे जले, अब फेस टू फेस कुछ ना बोल सकते क्योंकि वो है मुझसे डरे।

0: सबैलाई बडा दशैंको।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
0: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
1: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
0: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफर देखि आकर्षक उपहार सम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
1: ए साँच्चै? अनि अझ विशेष के छ?

0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
0: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
1: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
0: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफर देखि आकर्षक उपहार सम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
1: ए साँच्चै? अनि अझ विशेष के छ?
2: दसैँ तिहार झिलिली अफर,
1: सोफा तथा फर्निचरमा 30% सम्म छुटको व्यवस्था। 35,000 सोफा किन्नुहोस्, 35,000 फ्रिज स्क्रैच कार्ड मार्फत जित्नुहोस्।
0: साथै इलेक्ट्रिक जग, राइस कुकर, हिटर लगायत आकर्षक उपहार। 10 भाग्यशाली ग्राहकलाई निशुल्क थाइल्यान्ड भ्रमण।
1: अनि टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युब फलो गर्नेहरू मध्ये 1 35,000 सोफा निशुल्क।
0: नेपाल भर डेलिभरी, 15 सम्मको ग्यारेन्टी।
1: थप जानकारीको लागि सोफा हब नेपालगञ्ज, फोन नम्बर 97 0511 48 70।

0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
0: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
1: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
0: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफर देखि आकर्षक उपहार सम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
1: ए साँच्चै? अनि अझ विशेष के छ?

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी